0: Indian weddings are colourful extravaganzas, celebrations with a real bang.
1: As that little girl, oh my God, I'm marrying him.
0: A single wedding can rival the GDP of a small country. But at the other end of the scale, it's less a dream than a crushing burden.
2: अब मजबूरी रहती है कि हम लोग बड़ा नहीं कर पाए सोचते हैं कि इतना उम्र का करेंगे तो और ज़्यादा दहेज देना होगा जल्दी शादी नहीं होगा इसलिए हम लोग के पास नहीं औकात रहता तो जल्दी से कर दे
0: 101 East investigates the true price of love in India.

0: On the other side of the country, we're in eastern Uttar Pradesh, home to some of India's poorest communities. Most families here depend on agriculture and manual labour jobs just to get by. But wedding season is in full swing here too. Vaishali Prajapati is 24 years old. Even on the eve of her wedding, she can't get away from the housework.
1: So, लोग जैसे जिसके पास budget के हिसाब से बहुत बड़े से करता है, तो मेरा ज़्यादा budget है नहीं. तो जितना हम लोग को हो सकता है अपना इसी तरह अपने कम बेसी में जैसे कर ले रहे हैं.
0: Vaishali had a tough childhood. Her parents died when she was young, and she worked as a domestic helper to make ends meet.
1: मिर्चा लगे तो ज़्यादा हो गल नानी ना.
0: Still, she completed an arts degree. 4 years ago, she met her fiancé Sunny at work, and they fell in love.
1: ये भेजे थे कौन अच्छा लग रहा है? वो बोले कि ऐसा करते दादी दी से पूछ लो तो हम लोग का मन था घर के बड़े बोलेंगे तभी शादी होगा नहीं.
0: Both families agreed to the match, but it put Vaishali under pressure.
1: आजकल जैसे कि एक जैसे कम फैमिली के लिए जैसे कि जिसके पास ज़्यादा मनी नहीं है फिर भी जैसे सिकड़ी अंगूठी गाड़ी भले चलाने ना है लेकिन चाहिए ये सब सारा चीज़
2: पैसा रहा तो तनमी तो हम ताश ब्याह करी इतने.
0: Vaishali's grandmother is 80 years old and still working. She earns about $1 a day making these clay piggy banks. She's already borrowed more than $5,600 for the weddings of her two other granddaughters. Now, she's borrowed another $4,200 for Vaishali.
3: जो खर्चा है जो आपने 1 लाख लिया उसको आप क्या करेंगी?
2: दामाद जी को सिकड़ी बनवाए हैं, दामाद जी को अंगूठी बनवाए हैं, हंडा परात लोटा गगरा दुनिया का जो रितवाऊ लिए हैं.
3: उन्होंने मांगा है कि आप दे रहे हैं?
2: दे रहे हैं.
3: उन्होंने मांगा नहीं है? तो जब आपके पास इतना नहीं है तो आप उधार लेके क्यों उनको दे रहे?
2: तो इज्जत के लिए अपने की इज्जत बनी रहे.
3: अगर आप नहीं देंगे तो इज्जत नहीं रहती?
2: कैसे इज्जत रही दुनिया का कही? अरे दू जने के देने हमके ना मिलल वैशाली के सबके दे ली माई हमके ना दे.
0: Despite the financial pressure, Vaishali's excited. I join her family at a pre-wedding ritual called the Haldi for prosperity and protection from evil. She's not draped in gold, but marigolds.

0: लड़के हम लोग को भी पसंद थे, मम्मी पापा को भी पसंद थे, तो वो सारे थे.
1: Her only worry that she wouldn't be allowed to continue studying.
2: तो आपके बड़े सपने
0: हैं? हाँ, टीचर बनना.
1: Neha is in her first year of university and she's got exams coming up. But her family says waiting wasn't an option.
2: 19 साल तो बहुत छोटी उम्र होती है शादी कराने के लिए.
3: अब मजबूरी रहती है कि हम लोग बड़ा नहीं कर पाते हैं कि इतना उम्र का करेंगे तो और ज्यादा दहेज देना होगा, जल्दी शादी नहीं होगा, इसलिए हम लोग के पास नहीं औकात रहता तो जल्दी से कर देते.
1: In India, younger brides are often seen as more desirable. More likely to have children and less likely to make trouble in their husbands' homes. As women get older, proposals can slow and social stigma can grow. That can shift bargaining power toward the groom's family and in some regions lead to higher dowry demands, even though the practice has been illegal for more than 60 years.
3: तो इसलिए अगर हम लोग गरीब हैं तो रिश्ता लगता है तो हम सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी कर दे, अगर मिला ऐसा तो कर देने तो हम लोग लड़की बड़ी ज्यादा हो जाएगी तो लोग ज्यादा धन मांगेंगे, दौलत तो कहाँ से दे पाएंगे.
1: Ranjit's family didn't demand a dowry. Instead, he assured Neha that she'd be able to continue studying.
0: जब हम उनसे बात करते थे तो वो पहले तो रिस्पेक्ट दिए मुझे और मुझसे प्रॉमिस किए कि आपकी जो भी ड्रीम है मैं उसको पूरा करवाऊंगा.
1: As morning breaks, Neha and Vaishali's wedding day is upon us. In the center of Chunar, a short walk from the holy Ganga River, thousands of locals are gathering in the town's main park for a unique event, a mass wedding.
4: This is what it looks like when 200 couples get married at the same time. And a lot of the brides and grooms who've come today have only met a handful of times. It's really nice to see thousands of their community and family come together and celebrate their big day.
1: In Uttar Pradesh, the government runs mass marriage schemes for families who can't afford a traditional wedding.
5: Couples have been verified,
4: yes,
5: that they are eligible for this very marriage ceremony.
1: The state pays for the rituals, the food and the clothes and gives each bride household goods like a mattress, dinner set and pressure cooker, along with a one-off cash payment. All up, it's about $1,200. These are items that would traditionally form part of a dowry. But here, the government steps in, easing the financial burden on brides' families. Inside, the concurrent ceremonies kick off. Couples take 7 rotations around dozens of sacred fires. It's a bittersweet moment for Vaishali.
0: बहुत ज़्यादा हो रहा है. बस ये हो रहा है कि जैसे दादी को मतलब जैसे दिक्कत है जो घर में वो ख़त्म हो जाएगा, आधा तो कम हो जाएगा. मतलब ये हम चले जाएंगे, दादी दी को मेरे दिक्कत हो जाएगा, दीदी को दिक्कत हो जाएगा, सब लोग बोलेगा कि काम वगैरह को लेके. अभी भाई का शादी भी नहीं हुआ है, दीदी जैसे दादी हैं खाना कैसे बनाएंगी, तो ये कि छोटी वाली सिस्टर हैं.
1: Neha, marriage is still an idea shaped by hope.
0: मेरे लिए शादी का मतलब है कि मतलब अपने जीवन के लिए एक जीवन साथी चुनना और लाइफ में उसके साथ मतलब हैप्पी रहना और फुल लाइफ टाइम रिस्पेक्ट देना पार्टनर से.
1: It's a Sunday afternoon in New Delhi. Couples find pockets of privacy in the city's parks.